0: मुझे बंस।
1: एक्चुअली मुझे तुम्हारा फेवरेट कलर नहीं पता था, तो मैं हर कलर का एक फ्रेंडशिप बैंड ले आया।
0: ला दो, ये लो।
2: मैं

0: vida de um líder.
1: What
0: happened? Exactly at 10 a.m. आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाओ, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। I'm sorry. Excuse me.

0: घर पे बहुत बोर हो रही
1: हूँ,
0: कहीं चले?
1: कहाँ?
0: कश्मीर?
1: इस महीने नहीं बाबा, बहुत बुकिंग्स हैं। अगले महीने?

0: स्वामी
1: जी। आयशा सिगरेट पीती है।
0: मुझे पता है माँ। अरे वो कभी कभार ऐसे ही।
1: पता है तुझे, तेरे रूम के दरवाजे बंद रखती है वो। इस घर के दरवाजे आज तक कभी भी बंद नहीं हुए। ये इस घर में नहीं चलेगा।
0: अरे तो माँ लिखती है अंदर, दरवाजा खोल के लिखेगी क्या? उसका भी घर है ना। अच्छा करता हूँ, मैं बोलता हूँ।